याज्ञाकरं सर्वबलधारिव अनाद्य अनंतव दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरणेन गैलवीम सलसो मैनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।